तुमची वळख धरीन वय तुमची भी वळख धरीन तुमची वळख धरीन बाकी चुकती करीन समझी बाकी चुकती करीन।

0: था।
1: महडगाव अति महसूर वरद विनायकाच तीत एक मंदिर, मंदिर लय साध सुध जस कौलारू घर, घुमटाचा कळ सोनेरी नक्षी नागाची